0: Factor. All about the hits. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
2: पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: The Big Weekender. Hold tight for 4 hours of the biggest Bollywood hits.
1: All weekend long.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: For the very first time in Dubai, join Darshan Chopra for an intimate Zikr night. A quiet sanctuary where old Bollywood melodies, timeless nostalgia and stories drift gently into the evening. Zikr, where music becomes a memory we share. Saturday, 10th October at the Junction, Al Sarkal Avenue. Book your seats now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं? 4-5 दिन में?
4: चार या
3: पांच? पांच।
2: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2। द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios एंड Color Yellow Production present नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर एंड अदर्स। रिलीजिंग 16th October इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म। टू विन इनवाइट्स कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
3: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQ FTZ.com.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.

0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Big 106.2.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: बिग 106.2

0: beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
5: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार।
1: चार
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big. Big 106.2.

0: 92.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं। चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: weekend. The biggest Bollywood hits non-stop. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.

बजे सिर्फ बिग 106.2 पर. और कुछ स्क्रैप्स, MSN चैट्स एंड बॉलीवुड बैंगर्स. इट्स योर ऑडियो टाइम मशीन. दिस इज द बिग मिलेनियल वीकेंडर ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

जैसा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: आई थिंक पीपल लाइक मी हम अपने सोल मेट का भी इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हैं जितना वी आर वेटिंग फॉर मुसाफिर कैफे का सीजन टू, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो कि चंदर किसके पास जाने वाला है, प्रीति या फिर सुधा। Playing in the top 40 biggest hits of the week, ye hai Big Bollywood Countdown from Musafir Cafe this week on number 24, keeping you company of Mansi. Up next, we've got number 23 par Prem. फिर से आ चुका है हमारी जिंदगी में। मूवी का नाम है ये प्रेम मोल ले लिया, राष्ट्रीय फिल्म्स की मूवी है। द मूवी मार्क्स द ऑफिशियल रिटर्न ऑफ राष्ट्रीय प्रोडक्शंस मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर नेम प्रेम टू द बिग स्क्रीन, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 12 इयर्स दैट अ बरजातिया फिल्म फीचर्स अ लीड कैरेक्टर नेम्ड प्रेम विच इज नॉट सलमान खान। Because from मैंने प्यार किया to हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो, we've always imagined प्रेम as सलमान खान, but this time we've got आयुष्मान खुराना playing प्रेम। जब director सूरज बरजातिया ने पहले ये title propose किया था, आयुष्मान खुराना was hesitant and unsure about it. However, during a press launch at the Mumbai's Royal Opera House, आयुष्मान ने रिवील करा दैट द मोमेंट ही हर्ड के हिमेश रेशमिया टाइटल ट्रैक कंपोज करने वाले हैं, ही वाज इंस्टेंटली सोल्ड। ही सेड मूवी का मैसिव मैसिव यूएसपी इसका म्यूजिक है, एंड व्हेन इट इज हिमेश यू डोंट हैव टू वरी। फ्रॉम ये प्रेम मोल ले या इस हफ्ते ऑन नंबर 23। On 22, Imtiaz Ali with Diljit, Naseer Sahab, Sharvari and of course Vedang Rana.
1: Paas mere, tere paas mein.
0: Sharvari has had a great 2026 from Main Vaapas Aaunga to Ye Prem Mol Liya. She's got two big movies. And she was fantastic in this one. I can't wait to see her in a Rashtri movie, which is released on 27th November. Flower playing in the top 40 biggest hits of the week. Stay right here. This is the Big Bollywood Countdown.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: For the very first time in Dubai, join Darshan Chopra for an intimate Zikr night. A quiet sanctuary where old Bollywood melodies, timeless nostalgia and stories drift gently into the evening. Zikr, where music becomes a memory we share. Saturday, 10th October at the Junction, Al Sarkal Avenue. Book your seats now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
2: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 23.

0: 18.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया, सुनो। नाम या दाम?
2: नाम। मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: ना, पगला दूंगा पूरे देश को।
1: The Big Bollywood Countdown, the part of the Big Weekender, Big 106.2.

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: नंबर 15

0: biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Playing with the top 40 biggest hits of the week. Happy weekend, I'm Mansi. This is the Big Bollywood Countdown. Time for the top 12. Chipak gaya pichle 3 hafton se number 12 par. It's called Ranaji 2.0, which is a modern upbeat recreation of the iconic gana, 1995 ki movie Karan Arjun ka gana, Mujhko Rana Ji Maaf Karna. इसे रिक्रिएट किया है तनिष्क बागची ने एंड आई थिंक उन्हें बॉलीवुड रीमेक स्पेशलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि ही कीप्स द ओरिजिनलिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन बट स्टिल ब्रिंग्स अ न्यू मॉडर्न टच. द म्यूजिक वीडियो इज कोरियोग्राफ्ड बाय रेमो डिसूजा एंड ऑफ कोर्स स्टार्स बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा विद सुल्तान अली. ओरिजिनल गाने में ममता कुलकर्णी, जो काफ़ी खुश नहीं थी इस गाने के रिक्रिएटेड वर्जन से.

0: Awarapan, जो रिलीज हुई थी अर्ली 2000s में, was such a big fail at the box office and over time it became a cult. But this Awarapan 2 is इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट. Thanks to us, because आपका और हमारा रिश्ता इमरान हाशमी से पुराना है, and we'll get to see him again on the 27th of November with Gunmaster G9. With Imran, we'll get to see Janelia D'Souza and of course Himesh Reshammiya, and Imran Hashmi ka magic is back. After decades, they're doing a movie together jisme Himesh ka music hai and Imran actor hai. Afsana, afsana, afsana. मूवी को डायरेक्ट कराया आदित्य दत्त ने, जिन्होंने आशिक बनाया आपने बनाई थी. सो या द ट्रायो इज बैक आफ्टर डेकेड्स विद गनमास्टर G9 इस हफ्ते ऑन नंबर 8.
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2.

के बंदे टू लेजेंड्स वन स्टेज वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग पैंथियन प्रेजेंट्स बॉर्डरलेस मेलोडीज विद आबिदा परवीन एंड कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट 13th नवंबर एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बुक योर टिकट्स नाउ ऑन प्लैटिनम लिस्ट ब्रॉट टू लाइफ बाय हॉप इवेंट्स क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस दैट स्टे विद यू ऑफिशियल रेडियो पार्टनर बिग 106.2 Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQFTZ.com. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 9.

has been consistently number one पिछले चार हफ्तों से and stays on the top this week as well. मिथुन, प्रीतम and मुस्तफा जाहिद इस हफ्ते भी नंबर वन पे. फिलहाल यहाँ से मेरा बाय बाय कहने का टाइम. मैं आपसे मिलती हूँ मंडे को 5 to 9 is when I keep you company with the big thrill. Until then, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM. It is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. Happy weekend. Number.

0: सबसे धमाकेदार हिट्स।
1: Countdown.
2: Here we go.
0: सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर।

0: मैंने है ना फैसला किया।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

Big 106.2, but it is that time of the week again when we do the big binge with me, Sid. And aap jante hain show ka funda, philosophy, theory, theme is very, very Nick. Main aapka samay bachana chahta hoon, isiliye main weekend par aata hoon. Dekho, weekday pe to mujhse milte hi ho, subah 7 se 11 on the big breakfast. Lekin weekend pe aane ka mera agenda is only ek matra, and that is to save you some very well-earned, hard-earned, well-deserved time on the weekend. Ke yaar, idhar-udhar, itar-bitar ghoomte mat raho, review dhoondte mat raho, just depend on me. Aapse pehle, main khada ho jata hoon in the firing range. Dekhta hoon sab kuch jo release hota hai OTT pe, aur phir batata hoon kya dekhne layak hai. And most importantly, क्या देखने लायक नहीं है. सो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक स्कूटर, उसके दो जो व्हील्स होते हैं, या यू गेस्ट इट राइट, दुपहिया सीजन 2 रिलीज हुआ ऑन प्राइम वीडियो, इसके बारे में बात करेंगे. कीप इट लॉक टू बिग 106.2. दिस इज द बिग बिंज विद मी, सिड.

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
2: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
1: Amazon MGM Studios and Color Yellow Production present नई नवेली, starring यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर and others. Releasing 16th October in cinemas. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
0: Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

बात करने वाले हैं पोस्ट रुपया इज द शो दैट रिलीज्ड ऑन प्राइम वीडियो एंड सीजन वन हर किसी को पसंद आया था दैट इज व्हाई ऑफ कोर्स देयर इज अ सीजन टू दैट वाज ग्रीन लिट एंड सीजन टू हैज ड्रॉप्ड ऑन प्राइम वीडियो ऑन द 1st of October एंड दिस टाइम जो कि केओस शुरू होता है ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट केओस राइट वो एक मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है एक मोबाइल टावर लैंड होता है बनवारी के गांव में एंड रोशनी अपनी एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रही है भूगोल is dealing with his unexpected fame. Wo famous ho gaye bhai sahab. So, har kisi ki zindagi mein ek naya problem hai and that is what this season is about. First season ki kaafi sarahana ki gayi thi for its warm, small town humor, bahut hi likable characters bhi the. So, naturally, kaafi curiosity bhi thi ki season 2 kya us charm ko recreate kar payega without simply kind of repeating itself. And the cast is back as well. Gajraj Rao, Renuka Shahane, Sparsh Srivastav, Bhuvan Arora and Shivani Raghuvanshi. So, does the second season still have that Dupaiya wala magic? We will find out as the show goes forward. This is The Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

Big 106.2 but this is the Big Binge with me, Sid. It's time to talk about the good stuff. We are talking about Dupaiya, the show that released on Prime Video Season 2. Iska hai. And the best part is ki jo duniya hai na, the world still feels warm, very lived in, very genuine. Ki haan nahi, kabhi gaye nahi Dhadakpur, lekin gaye hote, to wahan par aisa hi hota, genuinely, very heartfelt the world is, and you genuinely enjoy spending time with the characters out there. Gajraj Rao, as expected, terrific, कहने की बात नहीं है. स्पर्श श्रीवास्तव बहुत ही funny है. And जो ensemble cast है, it works, क्योंकि कोई भी ना ऐसा नहीं सीम हो रहा कि they are desperately trying to be funny. कभी-कभी ऐसा होता है ना कि comedy आप पे थोप दी गई है, ऐसा feeling आता है. लेकिन नहीं, the punchlines are landing and the show is clever when it uses village problems to talk about bigger things. मतलब आपको लगेगा कि ये canvas छोटा है, लेकिन problems are a bit bigger than the canvas, so that always creates conflict, right? So technology के around अंधविश्वास, exam का pressure, social media का fame, यहाँ तक कि rumors, ambition, ये सब के बारे में काफी effectively बात हो रही है. And there's also something very refreshing about comedy, जो कि चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कह रही कि देखो देखो मैं कितना फनी हूँ. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा. एंड जो बेस्ट मोमेंट्स हैं दुपहिया के, इट्स गॉट दैट लवली क्वालिटी इन दोज मोमेंट्स, जहाँ पर द जोक कम्स फ्रॉम पीपल टेकिंग कम्प्लीटली रिडिकुलस सिचुएशंस वेरी वेरी सीरियसली. हाँ, कि आप और मैं उसको सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन ये लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं. एंड दैट इटसेल्फ इज जेन्युइनली क्वाइट फनी, वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ बाय द वे. एंड जेंटल है, अफेक्शनेट है द स्टोरी, एंड इट्स genuinely कई बार very very funny. So those are the good parts about Dupaiya season 2. What are the not so good parts? Coming up on the Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2. We are the beat of Bollywood.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड और 8 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक साथ आपने मैसेज करने की कोशिश की है. हाँ, वैसी फीलिंग आती है प्राइम वीडियो का दुपहिया सीजन 2 देखकर. इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स अबाउट द शो. डिस्क्लेमर, इट इज प्योरली माय ओपिनियन. द प्रॉब्लम विद सीजन 2 ऑफ दुपहिया इज दैट दे आर ट्राइंग अ बिट टू हार्ड. नाउ द राइटर्स आर ट्राइंग टू रियली डेस्परेटली मैच अप टू द चार्म एंड द फ्रेशनेस ऑफ सीजन 1, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स. देखो, बहुत सारी कहानियां एक साथ कहने की कोशिश. दोस 8 व्हाट्सएप ग्रुप्स, देयर इज अ मोबाइल टावर, रोशनी का एग्जाम, भूगोल का करियर क्राइसिस, रोमांस, विलेज पॉलिटिक्स, स्कैम, सोशल मीडिया सुपरस्टिशन, इतनी सारी कहानियां एक साथ. एवरीबॉडी गेट्स अ स्टोरी लाइन. लेकिन आफ्टर अ वाइल ना ऐसा लगता है कि यार एक क्लीन स्टोरी दो ना. ये इधर उधर बार बार, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो ADHD यू एक्सपेक्टिंग अस टू हैव. बट या इट ऑल्सो मीन्स कि कुछ कुछ इमोशनल मोमेंट्स जो है ना उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है. एंड सीजन 1 में जो एफर्टलेस सा एक फीलिंग था, सीजन 2 में ऐसा नहीं है. आई मीन लाइक आई सेड, इट सीम्स इट्स वेरी अपेरेंट द राइटर्स हैव बीन ट्राइंग अ बिट टू हार्ड टू काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एक और क्वर्की बट बिलीवेबल विलेज सिचुएशन. एंड कभी कभी आपको लगेगा कि यार सोशल सटायर अच्छा है, अच्छी बात कही जा रही है, बट देन इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल फाइंड अ सीन विच इज वेरी डल, वेरी ओवरक्राउडेड. यार मतलब ये क्या हो रहा है. मेरे लिए द बिगेस्ट इशू वॉज वेरी वेरी सिंपल. इट इज स्टिल चार्मिंग, सीजन 2 इज क्वाइट चार्मिंग, लेकिन इट इज नॉट वेरी फ्रेश. ऐसा लगता है कि यहाँ देखा देखा सा है. चलो बातें बहुत हो गई. इट इज नाउ गोना बी द टाइम फॉर द वर्डिक्ट वेदर यू शुड स्ट्रीम इट और स्किप इट. सीजन 2 ऑफ दुपहिया ऑन प्राइम वीडियो कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

106.2 पर द बिग बिंज एवरी वीकेंड आप सुनते हैं एंड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. लेकिन देखिए दिस इज दैट शो, यू डोंट हैव टू अग्री विद मी. इनफैक्ट इट इज वेरी गुड, आई वुड प्रिफर इट. If we have some disagreement, we were talking about the show that's called Dupaiya, season 2, season 1 pasand aaya, season 2 kaisa tha, iske baare mein we've been speaking for the past couple of hours. Aapko kaisi lagi meri analysis? Do you agree with it? Do you not agree with it? You can always kind of DM on our Insta 106.2 Big FM. Also, more importantly, if you've got a recommendation ke agle hafte, agle weekend pe jab main aaun, to कौन से शो को मैं, कौन से ओटीटी फिल्म को मैं रिव्यू करूं, इज देयर सम कंफ्यूजन आपके माइंड में, देखें ना देखें, टू बी और नॉट टू बी की जगह हम लोग वीकेंड पे, टू सी और नॉट टू सी, इफ दैट इज अ कंफ्यूजन इन योर माइंड, आई कैन सॉर्ट इट आउट. वॉच थिंग्स बिफोर यू, आई लव काइंड ऑफ वॉचिंग ओटीटी शोज एंड देन रिव्यूइंग इट राइट हियर ऑन द बिग बिंज. सो सेंड मी अ डीएम ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग एफएम, दैट्स आर इंस्टा हैंडल. यू कैन फॉलो मी एज वेल, आई एम सिड सेट, SID SETH. टिल नेक्स्ट वीकेंड देन, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. बाय बाय.